ताबीरे मायंग लंबम भानु लेमन सप मैते सैदा इमालेबाक सैथाजबा आकाशवाणी इम्फाल हौजी अमुपुदन लाक्सरी सैसक्प नोमाइथेम पहारी सिंग सप मणिपुरी मथम इसई मथंग मथंग होइना खुदोल गहन बदलखत सरबी सैसिग सेरेंगबा बीजेंद्र कुमार शर्मा

संगीत मंडल की शेषक पर सिंह सकपा मणिपुरी मतमी से ताबी खरी सैरिंग बा जोद संद्र सनसम आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अयोग की पुंग तरह तारे संदोक जरी खोंजेल नाचों

आर के सनातन भी देवी ने सकप नोट कृष्ण जन्म ताबीरी आकाशवाणी इम्फाल मैं नाम देवेन्द्र सिंह ने सकप तार से हेनाई ताबीरसी।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन

0: संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल।

0: अमर उजाला की सुर्खी है, अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends 2 more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of 2020 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And now the news in detail. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Centre. ISRO Chairman V. Narayanan said the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
3: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
2: Our correspondent has filed this report.
4: ISRO said the 2,367 kg satellite was placed in its intended sub-geosynchronous transfer orbit about 18 minutes after liftoff. EOS-5 is a state-of-the-art Earth observation spacecraft and India's first imaging satellite to be placed in a geosynchronous orbit. It is designed to provide frequent, near real-time imagery of large areas, strengthening India's capability to monitor the Earth. The satellite's data will support applications in agriculture, natural resource monitoring, and disaster management. It can provide timely information during disasters and

ngasi thawan gi kun humdoi ni banba yai faraba numit shri krishna ibungo mahaki mapok numit asina lakpada aikhoi khwai gi thamoi da lairamba akiba langtakna ba dangdu laita da ba pumnamak shibu kokhan biduna ayingba shanti leiba amadi nungsi chanabana mahut chinba oirashanu haiba paujel siga loinana ngasigi ngaikho ta khisigi thoramna mayam butaram okcheri ngasi asi irai numit oibana mayamna sms ki kuthangda tabiningi haiduna khanbirakpa tongan tongan ba manipuri album isai sin khudol tamjeri खुदो गि अहान बदल लखत चरीबा इसे यसी रणबीर थौना की नायदोम खोंजेलदा सैरेंगबा खाइदेम इमो अमसुं मसामबक न सैरांगबा इसे लाइरेमबीर नंगबु इसे यसीबु ताजनिंगी हाइदना खनबिरकलीबा मरुप सिंगदी कैराव वांगखेम मनिंग लेकाइदगी लुवांग थेम तोमबा निंगोल पुष्पा थोइबी पूर्णिमा विकप मखा लेकाइदगी तोंगब्रम लिंगजेल मैराबा कैसामपात अहैबम लेकाइदगी कांगजम देवेश्वर अमदी ngaikho ta khisi tabiriba mayamga punna tamina jage soinana thabira uko isei tanaba khawrani ngai jeri haiba message sisu ibijai

0: जय वासुदेव देव की गई, जय वासुदेव देव की गई, जय भोजराज कंस की।
1: Why, Carl, the lemonade?

0: पुत्री
1: भोजराज नया थंग तापिसी
0: चलो माथुरा रंगसी पोपांगांग पन मक तुम न हात के दबा
1: महाराज नया थंग मतुमी न पुन मक पंग खक्षण
0: दैव की
2: दादा महाराज
0: कराए अंगांग दो
2: दादा महाराज
0: वसुदे
3: भोजराज तप्तवी महाराज सिंहवीगनु महाराज वसुदेवन वसक नाकनी महाराज करिगी दमक सिंहवीर दैव की कदाई देव की आई वास कहन गनु देव की अगर देव मंद पियो देव की महाराज लवरो महाराज आई वास प्लासर बनी लवरो इचावन
0: कदाई अगर देव की
3: लवरो महाराज
2: दादा महाराज
0: नूपी
2: दादा महाराज
0: नूपी नंगना कंशल बुहातवा
2: दादा महाराज
0: निशन पोप मसाल संगी मनुंग नहा na aroi gani nupi oi na poglak laba ni pan suba angang na ha ko ikla hak makni na ha na jai
1: Ada yang betul, bang.
0: Pulang, pulang.

0: ब्रिंदावन लैरिबा नंदगी मशाने हाइबा अंगांगनी असि कना कना नो मखोय दैवकिन पोकप अंगांगला
1: आयो ताबियो बोजराश कैसुम संगदगी नोंग मत सुथादोक पलैखिद्रबा दैवकी बोसुदेवनिना नंदगांव पाऊ करम न खंगदगी ने महाराज थाजबियो महाराज नंदराज की मचानी हाइनरी बनीना नंदराज नंदरानी ने खंगफम थोइना
0: लॉर्ड न कानरोय बसुदेव मीनम बवांगांगनो शेंग हायो
1: भोजराज वसुदेव ने करिगंबन मित्त भोजराज की मफंदा मीनम बोई दवंगां केवलई तेरा महाराज ताबियो महाराज
0: आयो
1: मामा मपावेरी वही कोई थमोई कायर बपावगदा इसागे वासे कुंगा के नबकी दमकता इचापु नमक अमत्त खाते ने नफम दलाई ने पितोपु नंबा वसुदेव ने करीये कोई बुलाने लोग बिरी महाराज
0: वसुदेव
1: ताबियो महाराज महाराज ने याम नमक चिन्ने बिरी बा नचंगी गड़बड़गी पोलक पनी पान शुभांगांग दी नकुट मग नलोखे न
0: महाराज
1: वसुदेव नंगांग दी नकुट सिनकी दबरा ईश्वर के नंगदम न नहाकी नचंगी निपान शुभांगांग कंस महाराज नहाकी मृत्यु नि खंग लग पर देव की वसुदेव नि के करी रालो ने महाराज
0: वसुदेव
1: लाओ महाराज नहाक ने दुख सिंह वीरवती लाओ ने महाराज देव की वसुदेव नि वो नकुत पारिव थांगशांग दिन खुद कसी मक्त तक न हालरो महाराज ऐ कोई शांति पगल
0: महाराज खेंग बताक्रवदी मधुमक्खी न पांखो
1: न खनी महाराज करी लेखने लगे खुला याव दबनु पान पी कया अब कंक्षण हट क्या है विषय न मिथान थोकी मखई इंगांग सत्न होरस नु महाराज लाओ महाराज न थोक पान कर लो
0: जाई
2: दादा महाराज दादा महाराज दादा महाराज दादा महाराज मां बुहान हट कनु दादा महाराज मागे सो धन्नीनी की मामांगा मपुरोय बवात पा ओ मंगोला दुददी तान बिगनु ने दादा महाराज दादा महाराज लाई भक्ति बिन सन्न खंग नै दगी मिन न पाव कन नै यंग त्रिव दादा महाराज
1: देवकी
2: नहा कि न थोएगा इतानुंगे साग सिनवतार पाव बदा इसाबु लाइन पिथोक पंगंबा नहा कि न सनी ने दादा आई मलाई रे हरगा नहा कि अमांग मलाई रे बदी आई वो हालो दादा आई वो हान हालो ने दादा
1: देव की आई न नंगु काया की मत नुंशीवा काया दलू न तोग जब पुनमक नहा कौर बर दैव की ऐहि नुम सीजर बि दैव की हायो नाक अमुक्त हायो नंद ग्राम द लैरीबा अंगांगनी एसी केशोर बयो सियोरे
2: केशोर बयो
1: पांडम निंगाय लेतन नि थी जई नि थी सब उचु न पी न हो वनो न हो वनो गे कुतु गम खाना फिगे सेट गोबर दोन गी तम यादा मखुत तबाशी पाइगना संधि सनाओ कया बुसे न कोई न सेन सेन सने दो आदुदा मख की माया अंबने हकीरिक न तमजनिंगाए वरबा लुफा फुदोंग बगी कुचुरे सना फिगे अशंग शेतली मखुत्तना लांगोन हायो दैवते नाक न खंगला बड़ी हायो अंगांगनी अशी तसे नमक नंद महाराजी मचारा
2: दाना बेसो
1: हायो दैवकी हाय
2: कैसुम छंग द पुंसी ले लबी मसा काई न मई सांग साक लबी न सन्ना मधु खंग फम
0: दैवकी
2: भोजराज के अकल थौ ब्रजा द तोई न चली बा म खोई द हंग बीउ महाराज
0: दैवकी ताओ मथुरा बासी पुन मक आमदे ऐ अकल थौ सिंना न खोई न खंग फम थई हाय रे सेंग न हायो निंथी न हाई गई याद्रवदी ईशाशि कन्नन बगिद मक्त दैवकी वासुदेव न खोयने बु खुद कशि मक्त हा
1: भोजराज
2: हन्न हन्न किहन बगी करी मत कान बलै रोय ऐ खोई खंग बिहारी बसिन नंग यानी मदमक पांग थोक पया गनी ऐ खोई खंग बिहारी
0: पांग थो महाराज
1: अजुदी थोक दम कैन पांग थोक नी थोक
0: जाय
2: महाराज
1: भोजराज
3: नारायण नारायण
1: देवर्षि
3: राजन देवकी वासुदेव अनि वहात्पन नंगी करी सुकानव
1: देवर्षि
3: ताव राजन अई नलाक्ती बसे नहाकी या

0: 가리 구단 리릉 초대 그래하여
1: 모즈라스
2: 어택파 리릉 어디는 쿨라이 오이드는 강세기 아끌러 톡보나 막 아마맘따고 있는 핫크라바
1: 헤능악 리버디 모즈라스 마팔레 있던 끌러바 구블레 아필 사무 마웃크 코너나 자이가 살아기 통가 핫크리 모즈라스 구블레 아필기 마야사우와니두 마신 마나오나 아마맘 파르가 자이가 살아기 아코이부다 낙니바 अकल्लग थो पुनमक पु अममम तो इन हाथ करेने भोज राज
2: कनाले
3: भोज राज
2: चलो मातिक चाव लानी पूजन अंगांग अनिदु लक्षलो
3: भोज राज नया तम तुम ही नहीं थो पंडुक सर ले
1: इन करीनो नते करीनो इन्हें उरी बसी करीनो मुश्ते चानूर पुतन नचिंबा अकल्ल थो पुनमक ऐ नांग मक्त धात कबा
3: भोज राज
1: नते नते अदुगा शिनमु करी करी आइने उरीबा नते अंगक पमूर्ति अश्न करीना माने माने मखुट मरी पान व शंख चक्र गदा पद्मना लैतेंग व जादू शायगी देवता श्री नारायणनी अदुगा अदुगा मान इबु येंगल कई करेमन खांग खांग नौपी
3: मारा
2: खाओ पाव महाकु पाव
3: मारा
2: वाकई की यक्षबरी योलिंग चंचलो मांगन भंगल सुख नमल व कलागा दो फाजन में थंग में दबरी
1: अब तभी महारा करीनो करीनो नते मूर्ति दुरी मांग करना माधुगी महुत्ता तनो तनो रिवांगा गनी न कंसई गोंदा मामा मामा हाय न कौरीबा अदुति मखोई देव की वासुदेव न पोक्पा मानी मखोई
3: बोझरा पुंगिंदा की तुजुंग करी की दमक तपोक्पी चानूर मुष्टिक हाउजिक भाव हिंगली महाराज
1: चानूर मुष्टिक
3: पाकत की दिना महाराज की मित्त मसेन मंगांग उवतने मखुत मरी पान में कनाशु लागते महाराज शब्द तकी पिटली वांगांग अनीन चौंग जवतने लाक्ष शरोगांग पुनमाग महाराज की मांग ने नुग पाक्त मखां उपायजना हायत रहाच्च के महाराज
2: सिंह नव पुनमाग थारोक प्यो भोजराज अंगांग अनी ऐसी तनत्तना ब्रज की अंगांग पुनमाग लाक्षणो लखों नाम नाम पायर महाराज की मांग रा हैट हैट न मथाले
3: मानी
2: मोशे अंगांग पुनमाग मखों अनी अनी पाय नुग पाक्त हायत हायत न हाट के तबनी
4: करीगी तरानो पीड़िवनो मामा
5: तानो
2: भोजराज
5: मोशे शक्षलो अंगांग अनी ऐसी वो अमुकं पाय द मेखो इ द सीरन वे द पाछन के दमी
2: हम सारो
4: सारो चेन करो करी किनो
2: चानो
4: चेन भी लंबी गनी
2: चानो टक्सलो
1: चानो चानो पिकलवा नांग श्री खंगो मुक्त चानो रसी लसुंग फोन गुना तियातन पाइक तला

ताबिरे रेडियो लीला कृष्ण अवतार लीला सानबिकिब मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन थौरम संदोक्तुन ताहनजरीब असे आकाशवाणी इम्फाल दगिने हौजिक पुंगफम सिदा मुक तामिनसे तोंगान तोंगानब मणिपुरी फिल्म सेसिंग खुदोल गे अहनब ओइना लानथोकचेरी चाइना फिल्म सिदगी हुइद्रम पुष्पारानी गे नाइटोम खोंजेल द सरद अमदि लालमनिना सैरिंगब ओकेन अमाक चमना सैरांग बैसै

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजे नुमितयुंबपुंग तरानी थोई तारे आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल के अनिसुब थौरम परें संदोक पहौजरी संदोकचरीबा मीडियम वेब द मीटर चहुम निफु दस्पिक अमा किलोहर्ट्ज चनिपान मरिफुनी थोईनी हौजे चैनल सिदा नुमितयुंबगी पाव ताबिरसे
1: आकाशवाणी इम्फाल वाहिंगबम वाशिंगटन पाव पाजरी अहानबद मरुवैब पाव लैबाक सिनब थोंबदेंगासि भगवान श्री कृष्ण की मपोक नुमित जन्माष्टमी की थौरम पांगथोकली सेक्युरिटी फोर्स ना इम्फाल की कासार तमने लाक पत्रक अमदगी डब्ल्यू वाई टेबलेट किलोग्राम कुनमापन ग्राम चहुम फारे उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन नुमितनिनी की खोंचत्ता लाकलिब निंथोकाब नुमित शिलोंग थुंगलगनी भारत की सुप्रीम कोर्ट निबू ब्रिक्स की चीफ जस्टिस की मिफम न्यू दिल्ली हौरगनी लैबाक सिनब थुंबद भगवान श्री कृष्ण की मपोक नुमित जन्माष्टमी की थौरम पांगथोकनरी श्री कृष्ण की पोक्नफम मथुरा की वृंदावन थौरम चाउन पांगथोकनब सेम सारे अखोई की पाउमीन सोहर से भक्त लाख मंगा हेन

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर

0: संदेश के लिए आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
1: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
0: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
1: जी।
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है। उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है। आइए सुनते हैं।
1: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
1: जी
0: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
1: जी
0: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की।
1: जी
0: आज का क्या कार्यक्रम है?
1: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
0: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
1: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
1: जी,
0: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाईं
1: जी,
0: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
1: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
0: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
1: जी,
0: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
1: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
0: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
1: जी।
0: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
1: तो वे भारत क्यों आए?
0: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
1: जी,
0: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
1: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
0: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
1: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
0: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
1: जी।
0: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
1: जी।
0: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
1: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
0: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे, उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहां भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त, उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो

0: देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है।
1: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
0: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है।
1: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
0: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा।
1: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
0: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
1: भाई बता दूंगा ना बेटी।
0: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
1: बेटी ये शिंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
0: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
1: सच्ची भाई,
0: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
2: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
6: दासी!
7: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
7: जी महाराज।
5: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
7: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
7: राणी सा की जय हो।
8: आओ सखी, भीतर आओ।
7: जी, वो
8: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
7: वो कुछ नहीं।
8: कहूँ ना सखी, क्या बात है?
7: वो राणी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
8: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
7: पर हमें तनिक शंका होती है।
8: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
7: रुकिए राणी सा जरा ठहरिए। राणी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
8: राणा भेजिया विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर होनी हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या।
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा।
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
11: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर।
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा।
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
5: क्या सच? गोस्वामी

0: आदमी जी ने ऐसा कहा?
1: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
0: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रुई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: हीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: कितनी मधुर आवाज़।
3: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
3: यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
1: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
2: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
3: मैं भी
4: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
1: मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
5: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
6: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
1: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
7: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
1: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
6: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
2: हाँ, ये बात तो ठीक है,
6: हो गई दुगनी।
4: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
1: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
7: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
1: हाँ, 60 किलोग्राम है।
2: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
1: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
4: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
2: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
8: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
1: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
9: 300 किलोग्राम?
6: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
1: और चींटी की मम्मी,
2: उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
6: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
1: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम सोचो डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं।
2: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
10: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग
12: ताबिरे उमंग थोरमसी NCERT की तेंबांगा लोइनना पुथोक चवे थोरमनी।

0: ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗ ꯂꯕꯗꯥ ꯀꯧꯏ꯫ ꯖꯕꯔꯚꯥꯏ ꯄꯇꯦꯜ ꯓꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧ ꯎꯅ ꯎꯅꯁꯨ ꯑꯪꯀꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯔꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯝꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯦꯚꯦꯟ ꯇꯝꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄꯦꯗꯂꯔꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯇꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤꯗꯦ, ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯋꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅ ꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯪꯂꯟꯗ ꯕꯦꯔꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯈꯤꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 36 ꯁꯨꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯦꯔꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯍꯃꯦꯗꯕꯥꯗꯀꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤ�ꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯨꯛꯅꯕꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯒꯥꯟꯙꯤꯖꯤꯒ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯒꯥꯟꯙꯤꯖꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯥꯟꯙꯤꯖꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯔꯥꯖꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯇꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯊꯨꯝꯍꯠꯈꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯟꯙꯤꯖꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯇ꯭ꯌꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯟꯗꯣꯂꯣꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ, ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯖꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯥꯟꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 542 ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ 1947 ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯤ ꯅꯤꯖꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯍꯣꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯚꯜꯂꯚꯥꯏ ꯄꯇꯦꯜꯅ ꯌꯣꯠꯀꯨꯝ ꯀꯜꯂꯕ ꯊꯧꯅꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯕꯨ ꯗ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜꯕꯨ ꯁꯛ ꯈꯪꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯊꯣꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯚꯥꯗꯤꯌꯥ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫
1: ꯀꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯚꯜꯂꯚꯥꯏ ꯄꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯤ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ
2: ꯅꯃꯁ꯭ꯀꯥꯔ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯦ ꯗꯨꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯥꯊ ꯃꯦ ꯕꯤꯁꯥꯜ ꯁꯔꯃ। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जीएसएलवी F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: ब्रिक्स मुख्य

0: मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
3: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: इस बीच भारत ने 2 विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर

0: वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल

समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन निगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर। आरंभ होता है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम।

फुज भाई, आज का दिन बहुत ही खास है। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ सुनते हैं कृष्ण भक्ति पर आधारित चंद गाने। तो सुनते हैं कार्यक्रम के पहले पायदान पर महाराज फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में ये भजन। गीत के बोल है पारंपरिक और संगीतकार है सोहेल सेन।

फौज भाई अब सुनते हैं मिस मेरी फन से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में ये गीत। गीतकार है राजेंद्र किशन और संगीतकार है हेमंत कुमार। इस गीत में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम भाव को दर्शाते हैं। ये एक सदाबहार भक्तिमय और सुरीला गीत है जिसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है। तो सुनते हैं ये गीत।

फौजीभाई, आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ब्लफ मास्टर फिल्म से ये गीत। गीतकार है राजेंद्र किशन और संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी।

फौजी भाई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सागिर्द फिल्म से ये गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फुज भय भी आपने सुना। गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म गीत गाता चल से आरती मुखर्जी की आवाज में ये गीत। अब सुनते हैं अगला गीत मन्ना डे आमिर खान और लता मंगेशकर के युगल स्वर में झनक झनक पायल बाजे से ये गीत। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत वसंत देसाई का।
1: ना ना ना जना ना ना जना ना ना ना ना ना ना क्लान क्लान क्लान आता मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। जना ना ना जना ना ना जना ना ना ना ना ना मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया मुरलिया मुरलिया ताजे हैं। ताधी थी तत कितने बेदी दिखाई राधा राधा राधा राधा सीधा दीदी सीधा दीदी थी। Na na na na na na chum chum.

अब रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया।

फुज में इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम एक बार समाप्त होता है। एक बार फिर आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

हाउस की धर्म दत्ता बीरे फिल्म संगीत आकाशवाणी इम्फाल हौजेक चिंगडोलगी सैरोल दत्ता मीनसी जे जांगपी अमदी मपांगदगी खारम मतम इशाई।

तबीरे देवदास फिल्म दगी सगोल सिम तिजेंद्र न सकपा एल सनाहल की मयेकता सगोल सिम तिजेंद्र न सैरंग इसई फिल्म से खुदल से केरोय बताली जरे मैचाक फिल्म दगी लाइश्रम मेमगी खोंजेल दा बंकसर मना सैरंगबा अहिबम श्याम सिंह ना सैरंग इसई

बस होम थंग बगी मत हेला सी मत यहाँ हागी द बबू करी तोड़ बगी मुओ नुम्बा लता कुम्यान बनता लोई अतुम भी सिंग ने येंग ले रखा हाय खजिंग सिंग असी न खुरु खुदक कुंदन ले बसी उरुड़े हाय रखा लायर बल्लम जाना खुरु खुदक संसार ले इतना कुंब बम्बाली मशक असी येंग निंग तंदन तोड़ बनी सुमना नुम्बाला था कुंग्यान बना खुरु खुदक कुंद्र लेरी बक हजिंग को फाबी दो मताम पारे है रगा थक लाऊ न हुक बता दी हाय माय पिया मा नुम्बाला था कुंग्यान बदो महाउ दो मताऊ मनी हाय नहीं दे पर

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नाहरोलगी खोंजिल थौरमदा लांथुकचरी युट नाइट
1: नाहरोलगी खोंजिलगी युट टाइम्स ताबिरिबा मयाम पुमनमकपु अहानबमकतदा गौरी हाउबम अमदी
2: दबेक्तो अकोइजमना
1: तरामना ओक्चरी
2: खुरुमजरी नसिसु इराई कुदिंगी संदुक्सब युट नाइट नसिगे विनसु एक्वेगी थरुमसी पुदुना लाक्चरी अदुन एक्वेगी कांटेक्ट नंबर ओरिबा 7005489767 हाइरिबा नंबर सिदा व्हाट्सएप की खुथांगदा अदुमदुम नताबिनिंगबा मणिपुरी एल्बम सिसिंग थाजिन बिलेक्टुना पाम पामबा इसेसिंग अदुम खनबिरेकबा यारेनि दुगा हौजिक्सी एक्वेगी थौरमगी हौबगी पुंसी नुमिदांगी निपालगा मखाई ओइबनिदुना हाइरिबा पुंखमसिम हेक ताबगा एक्वेगी लिसनर्सिंगसी यामना एक्टिव विन यामना दुबक अखै थौरमसिबु पुंसंगना ताबिरेगा लैबनिना अखैगी मेसेजसिजु मथंग मथंग अदुम लाक्सिलै
1: देवेक्तो तसेंग नमक इसैसी ताबिनिंगबा हाइबतारे लोइनमक मखल सुननाबा इसई सिंह तोंगान तोंगान बा कया मखक अपाम अपाम बाय खै ताबिरिबा लिसनर सिंह नसु खनबि रखली अदुगा इसई सिंह असि लानथोकत्रिङैगी माङोइनना नसि असि यामना याइफरबा नुमित अमखक कृष्ण जन्मस्थामी हाइरिबा नुमित असि सु नसिगी नुमित असि थोकलरे अदुगा नहा सिंह हेने नक्षिनरिबदि नसिगी नुमित असिदा खै ममाङैदगी हौना लिकोन सानाबा हाइदना असिगुम्बा यामना नुङाइरबा अदुगा यामना फजरबा खैगी चटनाबि अदुगा हराउ तयामबा अदुगा पाखंगलेशा सिंग पुन्ना फमिनरगा पुकमेन पाउमेनबा अदुगा इसैना चिंगबा सिंग सखमिनबगी अदुगुम्बा कुमै हाइबतारे असिगुम्बा अमखखसु लैरी अदुना देवेक्तो लिकोनगी मतांगसे देवेक्तो दगी वाफम खरतासु ताजगे
2: होय लिकोल जेतासिना आइसा मखसु अमुक फाउबदि हेक्सानबा मुक्ति हकथिंगना मुक्ति
1: औजद्रिबा
2: होय अदुमा पुंगासिजिम ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯂꯤꯀꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨꯗꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯂꯤꯀꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯆꯠꯆꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯊꯥꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯧꯔꯤ ꯊꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯁꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ
2: ꯍꯣꯏ
1: ꯗꯦꯕꯦꯛꯇꯣ ꯁꯣꯈꯜꯂꯣꯏ ꯁꯣꯈꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯁꯣꯏꯕꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯔꯦꯡꯂꯤꯕ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯁꯨꯆꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯐꯪꯖꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯨꯟꯂꯤꯌꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯈꯣꯝꯕꯤ ꯁꯤꯜꯚꯤꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯗꯦꯕꯦꯛꯇꯣ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯝꯕꯟ ꯆꯥꯎꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅꯒ ꯍꯦꯛ ꯁꯛꯇꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄꯛꯆꯒꯗꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯗꯦꯕꯦꯛꯇꯣꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠꯀꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒꯦ
2: ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯁꯣꯏꯕꯝꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯅꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯁꯨ ꯏꯉꯝ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯅꯒ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯒ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯛꯆꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯗꯨꯒ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯡꯅꯗꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯗꯣ ꯒꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ
1: ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯖꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯗꯦꯕꯦꯛꯇꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯛ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄꯖꯥꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯦꯕꯦꯛꯇꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯍꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯁꯣꯏꯕꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁ�

आकाश बानी इम्फाल हौजिक पुंफम असिद कंगला चैनल लानथोक्चरी अदोम एस एम एस की खुथांग खनबीरक्पा फिल्म इसै सिंह अदोम एस एम एस खनबीरक्नानबा एखोय की थामजरीबा मोबाइल नंबर 9863102016 नंबर असिद मियामना पामबीबा एस एम एस सिंह थाबीरक्तुना पामबीबा फिल्म इसै खनबीरक्पा यारगनी अदोंगी एस एम एस खौरांना नायजरी अहानबो ओइना लोकचरीबा एस एम एस असे मैदांपुक्तगी मेधा लाइस्रम वाहिंखुमंदगी नांगों इंदिरा गलोइनना पुन थामीनरक्पा एस एम एस नी खनबीरक्लीबा इसैना योट की थामोय हारीबा फिल्म अदुदगी एके यांगोइना सकपा उजित बाबू निंथौजमना सैरिंगबा मदी ननाउ सगोल मांगना सैरांगबा इसैने इसैसी थौरमसिकी अहानबा खुदोल ओइना तहानजरी अदोंना खनबीरक्पा इसै खुदोल तमजरी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उस बाल रूप को जिसकी मुस्कान में वात्सल्य है, जिसकी बांसुरी में संगीत है और जिसके जीवन में प्रेम, करुणा और कर्म का संदेश है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और उनके जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। कृष्ण का नाम लेते ही मन में कई सुंदर चित्र उभर आते हैं। माथे पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी, गोकुल की गलियां और यशोदा मैया का वात्सल्य और नटखट बाल गोपाल की मनमोहक छवि। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत से गीत के साथ।

अब जरा गोकुल की कल्पना कीजिए। छोटी छोटी गलियां, गायों की रंभाहट, घरों से आती माखन की खुशबू और उन गलियों में दौड़ता एक नन्हा सा बालक। बाल का कृष्ण का बाल रूप भारतीय लोक स्मृति का बहुत प्रिय हिस्सा है। उनकी अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं। कभी वे माखन चुरा लेते, कभी अपनी सखाओं के साथ खेलते और कभी यशोदा मैया से अपनी नटखट बातों से मनवा लेते।

कृष्ण को प्यार से कई नामों से पुकारा जाता है, कन्हैया, कान्हा, गोपाल, गोविंद, मुरलीधर और नंदलाल। हर नाम के साथ भगवान कृष्ण का एक अलग रूप सामने आता है। कहीं वे नन्हे बालक हैं, कहीं मित्र हैं, कहीं सारथी हैं और कहीं एक मार्गदर्शक।

दोस्तों, अगर हम भगवान कृष्ण के संदेश को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो बहुत सी बातें सरल लगती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं और कभी नहीं। ऐसे समय में भगवान कृष्ण का संदेश हमें संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को ना भूलना और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना, और ये सारी बातें आज भी महत्वपूर्ण हैं और हमेशा महत्वपूर्ण ही रहेंगी।

दोस्तों आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये पर्व आपके जीवन में सुख शांति और आनंद लेकर आए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही।

0: in Shenzhen this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे एक विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से सुनवा रहे हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थल और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्मस्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
2: वंदे कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचन आयो अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात बरसता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे तभी कान्हा ने जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारिकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए।

0: परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की, जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे, एक बार पुनः ब्रज की धराधर में होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन, हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत, विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा माँ योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
1: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। आज के मंगल उत्सव में आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। धन्य धन्य ब्रजभूमि जहाँ प्रगटे वनवारी। जी हाँ श्रोताओ, यह ब्रज धरा वंदनीय है, पावन मथुरा नगरी अभिनंदनीय है, जहाँ पर हमारे ब्रजराज लाडले कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में जहाँ से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उसके ठीक सामने द्वारकाधीश महाराज जी का श्री विग्रह विराजित है और इस समय विग्रह स्थल के पट बंद हैं और बहुत सुंदर सा पीत वर्णी ये जो पर्दा आया हुआ है, जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए हैं, जिसकी आभा से ये पूरा भवन, ये पूरा प्रांगण आलोकित हो रहा है। और ठीक द्वार के बाहर जगमोहन में कुछ हिस्से को बहुत सुंदर सी रेलिंग से घेरा हुआ है। इस परिधि के भीतर सेवायत जन, जो सिर्फ उन्हीं का प्रवेश यहाँ पर वांछनीय है, वही इसमें भीतर है। सेवायत जन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के थापे रखे गए हैं और सेवायत जन जिस तरीके से जैसे इधर उधर अपने कार्यों में तल्लीन है, वह अद्भुत है, देखने योग्य है। और पुष्टि मार्ग में एक विशेष जो परंपरा है, जिस परंपरा को अपरस सेवा कहा जाता है, इसके तहत वे सभी किसी बाहर के व्यक्ति से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं और अंदर श्री विग्रह और श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में एक एक पल को लगा देना चाहते हैं। और आज हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर जितना सुंदर शहनाई वादन हो रहा, और एक अद्भुत दृश्य वहां पर देखने को मिला कि यहाँ

0: कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं। तो ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुत श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी। एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादरी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इसमें भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पलाएं, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपनी लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है, उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री का जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः 3 मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धालु तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, झान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ और उसके बाद सुबह 8 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प लिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिचड़ों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई और उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित है। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है और जो सामान्यतः जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी

0: उनसे जगह जगह सजाया गया है और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मार्च के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियाँ बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था। आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनन्य विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहां जहां भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड का, दीप माला ऐसे जगाती है और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में, हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का यह सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई, बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों, तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गिक द्वार हों। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हों। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां, और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई छुगावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झलकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
2: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ, हम जिधर देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फरचंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं, और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं, और कैसे हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम, बरसाना दिव्य महाराज की पावन धरा वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के सु अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवायत धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है। कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दधि दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है तो जैसे जैसे ये जैसे ही पर्दा हिलता है तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि अब पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है। और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
1: बहुत बढ़ती हुई व्यग्रता उत्कंठा उल्लास मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में जो कि जहाँ पर बल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहाँ पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है, और यहाँ पर जय जयकार के नारे भगवान के, लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख तो लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक 7 पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वसुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी जो थी उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं। चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
3: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार ऐसा क्षण है जो बड़ा ही भक्तिपूर्ण होता है। यह अवतार का क्षण भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भागवत कहता है, निशीथे तम उद्भूते जाय मने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाश्यः आविरासीत यथा प्राच्यम दिश इंदु इव पुष्कलः। जिसका भावार्थ है, मध्यरात्रि के उस दिव्य समय में जब भगवान जनार्दन का प्राकट्य हुआ, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए हैं, पर्दा हट गया है और श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन सबको सुलभ हो रहे हैं। और हम इसी के साथ ही मां भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है। उपसंहर विश्वात्मन अदह रूपम अलौक

0: ಮಸ್ತಕಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಶ್ರಿಯಾ ಜುಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಇಸ್ಕಾ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇ ಹೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಅಪ್ನೆ ಇಸ್ ಅಲೌಕಿಕ ಚತುರ್ಭುಜ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ಅಬ್ ಛಿಪಾ ಲೀಜಿಯೇ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಔರ್ ಪದ್ಮ ಸೇ ಸುಶೋಭಿತ ಯಹ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಮೇರಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೇ ಕಿ ಆಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಲೀಲಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರೆ. ಯಹಿ ವಯ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ ಹೇ ಜಹಾಂ ಪರಮ ಸತ್ತಾ ನೇ ಪ್ರೇಮ ಕೆ ಲಿಯೇ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಸೀಮಿತ ಕರ್ ಲಿಯಾ. ಜೊ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇ ವಹಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಿ ಗೋದ ಮೇ ಆನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ತಯಾರ ಹೋ ಗಯೇ. ಯಹಿ ಭಗವಾನ್ ಔರ್ ಭಕ್ತ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ವಿಶೇಷತಾ ಹೇ. ಇಸಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಪರ್ ಆಮಂತ್ರಿತ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಕೆ.
1: ಧನ್ಯವಾದ ಆಶುತೋಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಜಿ, ಕ್ಯಾ ಹಿ ಸುಂದರ ಪಲ್, ಅದ್ಭುತ ಘಡಿ, ಔರ್ ಜಿಸ್ ಘಡಿ ಕಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸಭಿ ಕೋ ಥಿ, ಔರ್ ಇಸ್ ಸಮಯ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಮಂದಿರ ಕೆ ಯೇ ಪಟ್ ಖುಲ್ ಗಯೆ ಹೇ, ಔರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಲುವೋ ಕಿ ಅಪಲಕ ನಿಹಾರನೆ ಕಿ ಯೇ ಜೊ ಕಲಾ, ಯೇ ಜೊ ದೃಷ್ಟಿ, ಔರ್ ವೋ ಜೊ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ನೇತ್ರೋ ಮೇ ಭರ್ನೆ ಕಿ ಯೇ ಜೊ ಲಲಕ ಹೇ. ಶ್ರದ್ಧಾಲು ಇಸ್ ಸಮಯ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಕಿ ಅನುಪಮ ಛವಿ ಕೋ ಏಕಟಕ ಅಪಲಕ ಹೋಕರ ನಿಹಾರೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೇ. ಹಾಥಿ ಘೋಡಾ ಪಾಲ್ಕಿ ಜಯ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಕಿ, ಶಂಖ ಧ್ವನಿ, ನಗಾಡೆ ಕಿ ಧ್ವನಿ, ನಫಿರಿ ಕಿ ಧ್ವನಿ, ಕ್ಯಾ ಆಜ ಕೆ ಇಸ್ ಧನ್ ಯಶೋದಾ ಭಾಗ್ಯ ತಿಹಾರೋ ಜನ ಏಸೋ ಸುತ ಜಾಯೋ. ಆಜ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಪ್ರಭು ಕಾ ಅಲೌಕಿಕ ಶೃಂಗಾರ ಹಮ ದೇಖ ರಹೇ ಠೀಕ್ ಸಾಮ್ನೆ. ಇಸ್ ಶೃಂಗಾರ ಕೋ ಭಾರಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ, ಔರ್ ಯಹಾಂ ಆಭೂಷಣ ಔರ್ ಅಲಂಕಾರೋ ಸೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಅವರ್ಣನೀಯ ಛವಿ, ಭಕ್ತಜನ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಆಕರ್ಷಿತ ಹುವೆ ಜಾ ರಹೇ. ಮಸ್ತಕ ಪರ ಕಿರೀಟ, ಕಾನೋ ಮೇ ಕುಂಡಲ್, ಕಂಠ ಪರ ಮುಕ್ತಾಹಾರ, ಮಣಿಯೋ ಕಿ ಮಾಲಾಯೆ, ಕಲಾಯಿಯೋ ಮೇ ಕಂಗನ್, ಸುಂದರ ಕರ್ಧನಿ ಯುಕ್ತ ಆಭಾ, ಬರ್ಬಸ ಅಪ್ನಿ ಓರ ಆಕರ್ಷಿತ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ, ಖೀಚ ರಹಿ ಹೈ, ಜೋ ಜಾ ಖಡಾ ಹೈ ವಹಿ ಪರ ಠಗಾ ಸಾ ರಹಿ ಗಯಾ ಹೈ. ಆಜ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಪರ ಮನಮೋಹನ್ ಕೆ ಸಾಥ ಮನಮೋಹಕ ಭೀ ಲಗ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಸಂಭವತ ಯಹಿ ವಹ ಶೃಂಗಾರ ಹೈ, ಯಹಿ ವಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೈ, ಯಹಿ ವಹ ಆಕರ್ಷಣ ರಹಾ ಹೋಗಾ, ಜಬ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ನೇ ಮಧುರಾಷ್ಟಕ ಮೇ ಲಿಖ ದಿಯಾ, ಅಧರಂ ಮಧುರಂ, ಬದನಂ ಮಧುರಂ, ನಯನಂ ಮಧುರಂ, ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ, ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ, ಗಮನಂ ಮಧುರಂ, ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ, ವಸನಂ ಮಧುರಂ, ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ, ವಚನಂ ಮಧುರಂ, ಬಲಿತಂ ಮಧುರಂ, ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ, ಗಮನಂ ಮಧುರಂ, ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ. ಆಜ ಲೋಕ ಮಾನಸ ಜನ ಮಾನಸ ಕಾ ಉತ್ಸಾಹ ಉಮಂಗ ಔರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ಮೇ ಇಸ್ ಸಮಯ ಬಹುತ ತೀವ್ರತಾ ಸೇ ಹರ ಕೋಯಿ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಮೇ ತುರಂತ ಆಗೆ ಜಾಊ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಕೋ ಉನ್ಕೆ ಬಗಲ್ ಮೇ ವಿರಾಜಿತ ರುಕ್ಮಣಿ ಜೀ ಕೋ ಯಹಾಂ ಜಾ ಕರ್ ಕೆ ನಿಕಟ ಸೇ ದೇಖ ಲೂ, ದರ್ಶನ ಕರ್ ಲೂ, ಯಾ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಕಿ ಅದ್ಭುತ ಛವಿ ಉಸ್ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ ಲೂ, ಔರ್ ಕಭಿ ವೋ ಊಪರ್ ಕಿ ತರಫ ದೇಖತೆ ಹೈ, ಕಭಿ ಸಾಮ್ನೆ ಪರ್ದೆ ಪರ್ ನಾಚತೆ ಹುವೆ ಮೋರೋ ಕಿ ಛವಿ ದೇಖ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಲೇಕಿನ್ ಪುನಃ ಸಭಿ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಲಗಿ ಹುಯಿ ಹೈ, ಔರ್ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಯಹಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಚರಣೋ ಸೇ ಊಪರ್ ಕಿ ಓರ್ ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ ದರ್ಶನ ಕಿಯೆ ಜಾಯೆ. ಕುಂಡಲ್ ಕಿ ಛವಿ ಅದ್ಭುತ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಹಿ ಸುಂದರ್ ಯೇ ಮುಕಟ ಕಿ ಛವಿ, ಆಪ್ ಜಿಸ್ ಅಂಗ ಕೋ ದೇಖೇ ಜಿಸ್ ಜಗಹ ಸೇ ದೇಖೇ, ಮೇರೇ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇಖನಾ, ಔರ್ ಯೇ ದೇಖತೆ ದೇಖತೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆತುರತಾ ಸೇ ಬಾಟ ಜೋ ರಹೇ ಬಹಾರ ಜೊ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ಖಡೆ ಥೆ, ಅಬ ವೋ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಆಗೆ ಆ ರಹೇ, ಔರ್ ಧನ್ಯ ಹೈ ಯೇ ಬ್ರಜವಾಸಿ, ಔರ್ ಧನ್ಯ ಹೈ ಯೇ ಸೇವಾಯತ್, ಆಪ್ ಅದ್ಭುತ ದೇಖೇಂಗೇ, ಜಿಸ್ ಕೋ ಭೀ ಕಿಸಿ ಕೋ ಕಷ್ಟ ನಾ ಹೋ, ಜೊ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸೇವಕ ಲಗೆ ಹುವೆ ಹೈ, ಜೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೇ ಲಗೆ ಹುವೆ ಹೈ, ಸಿರ್ಫ ಸಬ್ಸೆ ಯಹಿ ಕಹತೆ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಜರಾ ಆಗೆ ಚಲೋ, ಔರ್ ಯೇ ಬ್ರಜ ಮೇ ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಜಪೋ ಚಲೆ ಆಯೆಂಗೆ ಬಿಹಾರಿ, ಇಸ್ಕಿ ಗೂಂಜ ಕೆ ಸಂಗ ಯೇ ಬ್ರಜವಾಸಿ ಆಗೆ ಆ ರಹೇ ಹೈ, ಯೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ಆಗೆ ಆ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಅಸುವಿಧಾ ನಾ ಹೋ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮಾರೇ ಯೇ ಜೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೇ ಲಗೆ ಹುವೆ ಸೇವಕ ಹೈ, ಇನ್ಕಾ ಭೀ ಕಹನಾ ಕ್ಯಾ ಇನ್ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ. ಔರ್ ಇಸ್ ಸಮಯ ಚಲತೆ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಝಾಂಕಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ವಹಾಂ ಪರ್ ಭಾಗವತ್ ಭವನ್ ಮೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಸೇ ಕ್ಯಾ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾ ಮನೋರಮ ಛವಿ ಹೈ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಚಲತೆ ಹೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಭಾಗವತ್ ಭವನ್.
2: ಅದ್ಭುತ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕೆ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಕಿ ಯೇ ಛಟಾ, ಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅವಂತಿಕಾ ಸಪ್ತಪುರಿಯಾ ಹೀ ನಹೀ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇ ದೇವತಾ ಭೀ ಲಾಲಾಯಿತ ಹೋಕರ್ ಇಸ್ ದೃಶ್ಯ ಕಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕತ್ರ ಹೋ ಗಯೇ ಹೈ, ಔರ್ ಸಬ್ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಸ್ ಸಮಯ ಪೂರೆ ಬ್ರಜ ಮಂಡಲ್ ಪರ್ ಹೈ, ಜಹಾಂ ಹರ ಘರ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಕೆ ಆನಂದ ಕಿ ಬಧಾಯಿಯಾ ಗಾಯಿ ಜಾನೆ ಲಗಿ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಆ ಗಯಾ ಹೈ ಜಬ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಪುನಃ ಅವತರಿತ ಹೋಂಗೇ ಪ್ರತೀಕ ರೂಪ ಮೇ ಇಸ್ ಧರಾಧಾಮ ಪರ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೋ ಆಶ್ವಸ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ. ಯಹಾಂ ಭಾಗವತ್ ಭವನ್ ಕೆ ಜೊ विग्रह है वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाईं तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धरा धाम पर आ रहे थे तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रज मंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धरा धाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं, और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी हैं, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कई प्रसंग हैं, तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है, तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित, सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक जी। भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है, और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर कर कर श्री राधे जय श्री राधे कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा है उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं, और जो भक्तों का आने क्रम था अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं, और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दें। सुरक्षा प्रहरी सेवायत ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है। और ये पट सब बंद है, जो यहाँ पर सेवायत है पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं, और जो कास्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री की घड़ियां हैं जिनको इंतजार करना हर एक लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए, और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें, प्राकट्य उत्सव के बाद जब लाला बाहर आते हैं, उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट, और ये कपाट खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसे राधे का जय घोष हो रहा है, और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तालियां बजा रहे हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे, अचानक उनके भजन गाने में ढोल, झांझ, मजीरा, मृदंग, और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित एकदम धीरे धीरे उसकी पंखड़ियां खुलती हुई, क्रमशः पंखड़ियां खुल रही है, और ये लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में, नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहां पर जो दूसरे सेवायत हैं वो आरती कर रहे हैं, और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और सुगंधित द्रव्य वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है, और ढोल, झांझ, मजीरे, मृदंग, संग, इनका संदेश और अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए, विशेष जन है, सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं, और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने परिवारिक जनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियां खुल चुकी हैं, वहां पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान है, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है, और यहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं, और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सके, लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है। और इस समय आरती हो रही है, और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवायत हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है, जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहां पर चल रहा है, और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं, और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार के यंत्रों से, जो ढोल, मंजीरे, शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियां बिखर रही है और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। जो भक्त जहाँ भी है ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है। अचानक भक्तजन उछल छल नृत्य कर रहे हैं और जितने विशेष जन है उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सके। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन है जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप है, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, युद्ध भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
2: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का, और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है। प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का, उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूँ, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और

0: धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में है, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने है, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम भी है, सखा भी है, पथ प्रदर्शक भी है और निष्काम कर्म योगी भी है। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा होता है, और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धूप तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई ओर छोर कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी, तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है, आत्मा तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है, ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उफंती यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उफंती लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में, यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा, जो कि शिशु रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में, जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है, और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया, जहां पर एक कामधेनु स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेनु विराजित है, जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्धधार से भगवान

कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो भाई और मंच है वहां पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी के रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं। और ये बाल लीलाएं करते हैं, ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, लूना चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है, इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है। और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का, जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद, और इन सबके साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती हो, और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती होगी, और प्रातः यहाँ पर आनंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं, और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धाल आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त जन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठाकर कर रहे हैं, और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे सुरक्षा कर्मी है, वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन है, इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक है। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारिक जनों के साथ में आते हैं, और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरभि के साथ निशिगंधा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हम और आप मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी।

भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए सत्य का साथ देना चाहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण करके चलता है तो वही मन शक्ति बन जाता है, लेकिन यदि मन में नियंत्रण नहीं है तो वही मन परेशानी का सबसे बड़ा कारण भी बनता है।

इस दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये दुनिया, ये जीवन रुक जाएगा। परिवर्तन के साथ साथ सुख दुख, लाभ हानि और कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, और ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कड़क रहते हैं और इन परिस्थितियों से जूझ कर आगे निकलते हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपने धर्म और कर्तव्य का पालन भी करते हुए कठिन परिस्थिति में भी उचित कर्तव्य के साथ जीवन को श्रेष्ठता से जी सकते हैं, जी लेते हैं।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण। क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही?

0: करे व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
1: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
0: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
1: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

क्रोध बढ़ने से विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध बढ़ने पर मनुष्य सही और गलत का निर्णय खो बैठता है। इंद्रियों पर इसीलिए नियंत्रण आवश्यक है कहा गया है, और सच्ची शांति भीतर से आती है। बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। वास्तविक शांति आत्मसंयम और संतोष से मिलती है।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी गीत सुहाने में 1:10 पर। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के

0: ये धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कामकाज के नियमों को अंतिम रूप देने, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने और जन कल्याण व विकास से जुड़े अन्य मामलों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी जानकारी दी, जो 7 सितंबर से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन तथा गुजरात के द्वारका में मुख्य आयोजन हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों को भी इस अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करते हुए महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए में पाकिस्तान से भिड़ेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के अपने पहले 2 मैचों में थाईलैंड और हांगकांग चीन के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 3-day BRICS Chief Justices Foreigners begin in New Delhi. The Foreigners brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and Senior Judicial Leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India's Justice Suryakant held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening a judicial cooperation among countries, technology advancement, integration.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जी हाँ, लेकर आए हैं वो हसीन गीत नगमे जिन्हें जब आप कमरे की खामोशी में सुनते हैं तो एक खास चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि इंसान अगर दूर भी है तो भी उसकी मौजूदगी दिल के बेहद करीब महसूस होती है। तो चलिए याद करते हैं उस खास इंसान को जो आप

आपके दिल दिमाग में समाया हुआ है, हम सुनाएंगे गीत, आप कीजिए याद और इस गाने को दिल तक उतरने दीजिए। शायद कुछ अधूरी बातें हैं जो आज आप इस गीत के जरिए महसूस कर सकें।

कुछ रातें ऐसी होती हैं जो किसी के इंतजार का मौसम होती हैं, और कुछ रातों में हवाओं में मोहब्बत होती है, आंखों में ख्वाब होते हैं, और जब ऐसी रात आ जाती है दिल में बस एक ही ख्याल हो कि काश वो इस वक्त हमारे पास होता। शायद ये वही रुत है जब दूरियां भी कम लगने लगती हैं और किसी की याद किसी को छू लेने जैसी महसूस होने लगती है। तो चलिए इस खामोश रात में हम आपको सुनवाते हैं मेला फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और रफी

कभी कभी ये दिल कहता है कि बस सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाऊं, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस चुपचाप उसके करीब बैठ जाऊं और उसकी आंखों में अपने लिए सारी मोहब्बत पढ़ लूं। पता नहीं उसे भी मेरी तरह मेरी याद आती है या नहीं। ये रात, ये तन्हाई, और इस तन्हाई में उसकी याद जब आती है तब दिल इतने सारे सवाल करता है कि क्या ही कहे। शायद मोहब्बत का मतलब साथ होना नहीं, बल्कि कभी कभी किसी को टूटकर बेहद चाहना भी होता है, और उसकी यादों के साथ अकेले मुस्कुराना भी तो मोहब्बत ही है। और ऐसे में जब बात हो गीत संगीत की तो ये गीत तो याद आ ही जाता है।

लता मंगेशकर और किशोर दा को भी आप सुन रहे थे मिस्टर नटवर लाल फिल्म के इस गीत में। और अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं धर्मात्मा फिल्म का, मुकेश साहब और कंचन की आवाज़ में।

1:42 और 51 सेकंड हो रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने, मैं हूं सुरभि आपके साथ। यकीन मानिए कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन जब बात मोहब्बत की हो तब कोई भी वक्त आ जाए उसका कोई असर नहीं होता। तुम पास रहो या दूर रहो, दिल में वो जगह हमेशा बरकरार रहती है। शायद हम हर बार मिल ना पाएं, रोज बातें ना कर पाएं, कुछ कह ना पाएं, लेकिन दिल की दुनिया में हमेशा वो जगह उसके लिए बनी रहती है। तो चलिए, ये रात गवाह है, खामोशी गवाह है, दिल गवाह है कि मौसम कितने भी आए बदल जाए, चाहे जिंदगी बदल जाए, लेकिन प्यार जो था जैसा था अच्छा था, और प्यार हमेशा अमर रहता है, अमर रहेगा।

गीत सुहाने प्रोग्राम में अपने अंजाम की तरफ धीरे धीरे हम और आप बढ़ रहे हैं, और चलिए सीआईडी फिल्म का गीत सुनते हैं आशा भोसले, रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ में।

तो इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए अनुमति, हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ब्रिक्स देशों के

0: प्रमुख मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विजय मेहरा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन के साथ कल पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के लिए डच नेशनल इंस्टीट्यूट का दौरा किया। जुलाई में जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी के वी एल कांता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जल प्रबंधन में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नीदरलैंड का दौरा किया था और गुजरात में कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर तकनीकी बातचीत की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वियतनाम के दा नांग में चल रहे पिकबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन भारतीय टीम ने लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टीम का रिकॉर्ड अब तक अजय रहा है। हर्ष मेहता, अर्जुन सिंह, अनिश फ्रोइलन, अमन पटेल, पर्ल अमल साधीवाला, नाओमी अमल साधीवाला, आली इब्राहिम और मिहिका यादव वाली भारतीय टीम ने पहले राउंड ऑफ 13 के मैच में चीन को 4-0 से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening of the judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honours the contribution of teachers and educators in shaping generations and strengthening the foundations of society. President Draupadi Murmu will today confer National Teachers' Awards to 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The 48 selected school teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 organizations.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। नमस्कार। पत्थर बनकर मोम पिघलने वाले हैं, इंसान हैं पर रंग बदलने वाले हैं। झूठ ने ऐसा तीर चलाया महफिल में, सच्चाई के प्राण निकलने वाले हैं। पत्थर हैं, पत्थर बनकर मोम पिघलने वाले हैं, इंसान हैं पर रंग बदलने वाले हैं।

अंधेरा जब मुकद्दर बन के घर में बैठ जाता है, मेरे कमरे का रोशनदान तब भी जगमगाता है। अगर मर्जी ना हो उसकी तो कुछ हासिल नहीं होता, किनारे पर लगे कश्ती तो साहिल डूब जाता है।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, जिस पर वक्त फिदा होगा, जिस पर वक्त फिदा होगा वो अंदाज जुदा होगा, तेरे दर को छोड़ कहीं हमसे न सजदा होगा। पीर पराई क्या देखिए स्वार्थ का पर्दा होगा, तन्हाई में सोच वतन का कैसे फर्ज अदा होगा, तन्हाई में सोच कैसे फर्ज अदा होगा, और जिस पर वक्त फिदा होगा वो अंदाज जुदा होगा।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देखिए धीरे धीरे हम और आप आखिरकार अंजाम तक आ ही गए हैं। तो चलते चलते सुनवाते हैं आपको एक और खूबसूरत गीत। बहुत खूब कहा है किसी ने कि टूट कर जाता बिखर गर हौसला होता नहीं, क्यों यकी होने लगा कोई खुदा होता नहीं। आदमी ही आदमी के काम आता दोस्तों, आदमी से बढ़ के कोई दूसरा होता नहीं। क्या अहमियत प्यार की है, क्या जरूरत है तेरी। क्या अहमियत प्यार की है, क्या जरूरत है तेरी। क्या पता चलता अगर तुझसे जुदा होता नहीं। देर से आई समझ में बात ये, लेकिन मेरे बावफा होता जो मैं वो बेवफा होता नहीं।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के विषयों के पेपर में गलतियां की शिकायत के बाद दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पूर्वी राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening of judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations at Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honours the contribution of teachers and educators in shaping generations and strengthening the foundations of society. President Draupadi Murmu will today confer National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The 48 selected school teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government. The president will also present national awards to teachers on 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. The External Affairs Ministry said 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighbouring country. Briefing the media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals are still missing. He added that 1,907 Indian nationals have safely crossed into Nepal from China. Mr. Jaiswal said India will continue to provide assistance based on the requirements of the government of Nepal.
3: In the wake of this tragedy, we have extended

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है अरुणिमा मेरी यानी पंकज के साथ। दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूं। अभी के लिए मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में सीमा मूवी से ये गाना।

सबको पता है इजाजत मूवी का ये गाना आशा जी की आवाज में था, आरडी बर्मन का म्यूजिक और गुलजार के बोल थे। जिंदगी हमें जी रही है, हमें भी तो जिंदगी को जीना चाहिए ना, अब सांस लेना ही जीना नहीं होता ना, अब जीवन की घटनाओं का साक्षी बनकर उन्हें महसूस करके हर रस को फील करना चाहिए। जिंदगी अस्थाई है, इसलिए हर स्थिति में डट कर खड़े रहिए और खुश रहिए मेरी तरह। अरुणिमास शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आज जन्माष्टमी उत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आज टीचर्स डे भी है तो सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। और अब इन दो गानों के बाद मैं आपसे मिलूंगा, आप इन दो गानों को एंजॉय कीजिए, मिलता हूं।

अगर आपने ये वाली मूवी नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी, बहुत कॉमेडी मूवी है। गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का म्यूजिक और आशा जी की आवाज में नरम गरम फिल्म का ये वाला गाना था। आज जन्माष्टमी के त्योहार पर जो है हम श्री कृष्ण के ना पूरे जीवन को एक बार टटोलें तो उनका लीला रूपी जीवन जो है वो कितने ही मानसिक और शारीरिक कष्टों से भरा हुआ था। रिश्तों की आपाधापी, प्रेम अश्रु, सबका जीवन संवारते गए कृष्ण और अंतिम लीला में भी मुस्कुराते हुए प्रभु जो है लीला समेट कर अंतर ध्यान हुए। श्री कृष्ण की लीला की सरलता, सहनशीलता, करुणा आदि जो है वो अन्य भावों को हमें अपनाना चाहिए और जीवन में ना हम कभी हार ना माने, टूटे नहीं चाहे लाख गमों के तूफान आए। सच मानिए, भगवान ऐसे बहादुर लोगों की ना पग पग पर संभाल करते हैं।

पता है, जिंदगी में हर बार है ना हमारे मन का नहीं होता है और उसे बेहतर बनाना पड़ता है। और जो भी होता है हमारी जिंदगी में, ये भी कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन जो हो रहा है उसे बेहतर बनाने की जो है हम कला अगर समझ जाएं और सही मायने में उसको अच्छा कर लें, तो तभी हम जिंदगी के खिलाड़ी होते हैं। अब जैसे हम बाजार से कच्चा सामान लेकर आते हैं और रसोई में उसे पकाकर जो है टेस्टी बनाकर सजाकर तब उसे खाते हैं, ऐसे ही हर सिचुएशन है कच्ची और उसे फिर पकाना और फिर जी जाना, और फिर हमारा काम जो है वो मतलब जिंदगी को अच्छा बनाना होता है। आई नो, मतलब कि कहने में बड़ा इजी लगता है, क्योंकि देखिए हर इंसान की जिंदगी के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और हर किसी को इतनी स्मार्टली उस सिचुएशन से फाइट करना नहीं आता। आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन हिम्मत अगर रहे ना, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि जब इंसान प्रॉब्लम से फाइट करता है तो फिर भगवान भी जो है इसकी हेल्प करते हैं, आगे थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े रास्ते खुलते जाते हैं। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ही, हम सब के पास बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अभी के लिए बैक टू द म्यूजिक, आप सुनते रहिए अरुणिमा, मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

हेमलता की आवाज में जख्मों के निशान फिल्म का ये गाना था। जीना एक कला है, बिना सोचे समझे सीधे सीधे जिंदगी को जीना और उसकी राह पर चलना भी ना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसे पहले हम समझें कि कोई उदासी अगर हमारी जिंदगी में आई, कोई मुश्किल आई, कोई हानि हुई या कोई प्रिय बिछड़ा आदि आदि, तो उस स्थिति से निपटें कैसे, खुद को हम कैसे संभालें। अपनों से बड़ों के जो अनुभव होते हैं उन्हें हमें सुनने चाहिए, दूसरों की जिंदगी भी देखें कि जिसने जो भूल की वो हमसे ना हो, तभी जो है जिंदगी ठीक हो सकती है। मुझे ऐसे कभी कभी ऐसे मुझे लगता है कि जब दूसरे लोग गलती करते हैं तो वो शायद हमारे को सुधारने के लिए होती है कि आप देखें और जो उनसे भूल हुई है वो आप ना करें, मतलब वो हम ना करें। खैर, अब सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 5:10 तक आप हिंदी और इंग्लिश में न्यूज सुनेंगे और फिर अगला शो होगा भोर सुहानी, उसमें मैं आपसे मिलूंगा। अभी अरुणिमा शो बस कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा, तो अभी इसी तरह रहिए मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, किशोर दा की आवाज में एक मुट्ठी आसमान, 1973 में ये मूवी रिलीज हुई थी। अगर आपका मन करे तो ऑनलाइन ये है, आप देख सकते हैं। वैसे भी आज वीकेंड है, सैटरडे, तो आप टाइम निकाल के इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनके चरित्र का निर्माण करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक्स के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका की शुरूआत भी करेंगे। इसके अलावा वो वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर हैं। वो कल गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ गोवा से संबंधित मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बाद में वो मादक पदार्थों पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह शाम को अटल भवन में नव निर्मित भाजपा राज्य कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। वो पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सोमवार को गृहमंत्री पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और गोवा पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान में शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रखे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी

0: तकनोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज भारत का मुकाबला होगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे भोर सुहानी शो मेरे यानी पंकज के साथ। तो शुरुआत करते हैं दो गानों से और दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूं चांदनी मूवी के इस गाने के साथ। स्टार्टिंग करते हैं।

वैसे आपने गौर किया कि मतलब अभी जो है इतनी जल्दी सुबह हुई नहीं है, मतलब वैसे सुबह हो चुकी है लेकिन उजाला नहीं हुआ है, वरना पहले तो कितनी जल्दी उजाला हो जाता था, 5 बजे ही काफी उजाला हो जाता था, और अभी मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है रात जैसा माहौल है। यानी सितंबर आ चुका है, सर्दियां भी आने वाली हैं, आज 5 सितंबर हो चुकी है। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में बेटा फिल्म का ये सॉन्ग था, और समीर के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत था। आज है खुशी का दिन यानी शनिवार, छुट्टी का दिन, ऊपर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हमने मनाया ही है, यानी आज 12 बजे हमने मना चुके हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और आज टीचर्स डे भी है, तो इन दोनों उत्सवों की बहुत बहुत सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और मैं पंकज हूँ आपके साथ भोर सुहानी शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और पता है खुशी की बात ये भी है कि उधर ढेर सारे त्योहार और भी आने वाले हैं, यानी हर पल खुशियां मनाइए FM गोल्ड के साथ। 2 गानों के बाद आपसे मिलता हूँ, गुड मॉर्निंग।